राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेक लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सुपेरे दी बीन उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सुपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी तो निकलदी है तो सप मस्त होके नच उठता है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जाता है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द की महानता दा रख्या है। ये पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे नानक राहो पछाणे से, इसका उपदेश इसे राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगते हैं। गंधार अते धैवत वर्जित हैं। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो अते दूसरे शब्द गायन कर रहे हैं भाई दिलबाग सिंह भाई गुलबाग सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है हर हर संत जना की जीवन। श्रवण करो पहला शब्द जप मन जगन्नाथ जगदीशरो।

अचल अविनाशी सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मलनासी सतगुर।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहाँ को बगता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन कर रहे हैं। ध्यान देना बाणी पातशाह आखदे

तीर्थ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज

सूत कलहे न कीड़िया क्यों चब लंगाइए सावन रहन पंभीरिया क्यों पार वसाइए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न होवे बिन गुरमुक्त न होवे।

और ये गामा बानी दारे दारे नीदा नीदा नीबा धामा धामा गा धामा बाबा बा धामा धामा बाबा गा धामा रे दानी दानी रे दारे दानी रे रे दानी दारे दानी दागा धामा बा गामा बानी दारे रे दारे नीदा नीदा धा धामा बाबा धामा दागा दागा मगरे जे गारे दानी दानी रे रे तोम जरना जरना जरना जरनी दानी तोम दानी दागरदी बिकते मंग दागरदी तोम तोम तोम करना दागरदी दे दे ताल दागरदी कोम करना दागरदी दे दे ताल दागरदी दे दे ताल दागरदी दे दे ताल दागरदी दे दे ताल ले दागरदी कोम करना दागरदी दे दे ताल दागरदी दे दे ताल ले दागरदी कोम करना कोम करना कोम करना

सारा किवन किन ही निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया किन्हीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्हीं कया मैं कुले वडाई किन्हीं कया बाह बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्हीं भवन सब

0: तेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पेरणी दी चुगी विच पहुंचे हैं। भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा। कुछ अरदास आया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल। पीरनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला। रब नू बड़ी भुख लगी बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष। नाम जप के नाम दी प्राप्ति, नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो। जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे नु भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है। तुरे तां हन जेड़ा तुरे है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा। गली बाती तो पहुंचिया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है। और भाई महापुरुषां दा कथन है गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार। ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साई दे मिलन दे कर्म चंगे ते उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुकम। कर्म कर महापुरुषां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी। कई कहंदे जी संतां दी महापुरुषां दी संगत कीतियां की मिलदा। ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी। चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस लेंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चलिए। मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताईं।

सखी काजल हार तमोल सबो किछ साजिया सोलह किए सिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत सबो किछ पाइये हरे हां कंते बाज सिंगार सब बिरथा जाइए। पने पाछा धन गुरु अर्जुन देव दाता जे साई घर नहीं आया ता सिंगार किस देखे ते गुरु नानक दा प्यार अंदर आके नहीं वसया ता दुनियावी पदार्थ किसे लिखे नहीं किसे लिखे फरी दे दिल च खिच पई लबदा लबदा इस माता कोल पहुंच गया। आ बेटा फरीद अज किवें आए हैं मां मैं सुने तू दस देंदी है अज रब टुटा है या अज रब रुस गया मैनू भी दस रब नू मनाण वास्ते कई तरह दी गालना गाली पर मेरा साईं अजे नहीं मनीजिया रुसिया फिरदा है पर तू दस। तो इस माता ने किया बेटा फरीद बैठ जा बैठ गया। तो माई प्राप्ति वाली सी प्राप्ति वाली बाबा जी बचन कर रहे सन भाई गुणा दा पूजन गुणा दा पूजन कई माइया ऐसिया उच्च जीवन वालिया सिमरन वालिया जिन्हां दे दर्शन कीतिया चेते आउंदा सतनाम सूरबीर माता भागो वर्गी ए भी इहो जी कहन लगी फरीद की पुछदा है मां मैनू ये दस वे रब टुटदा किवें। इस माई ने कहा फरीद जिस दिन किसे साईं दे प्यार वाले दे दर्शन हो जाए किसे बख्शी रूह दे दर्शन हो जाए किस दिन खुदा परस दे दर्शन हो जाए साईं दे चरणां नाल जिसका मन जुड़िया फरीद जिस दिन उस महापुरुष दे दर्शन हो जाए तू समझ लै के अज मेरे उत्ते रब टुटा है आखो श्री वाह रब टुटे दी निशानी है रब टुटे दी ओए किरपाल स्वामी मेरे स्वामी किरपाल हो गया तो दिता की हजूर फरमाउंदे ने होए किरपाल स्वामी मेरे संता संग चाहे त्यागी है चाहे गृहस्थी है ग्रस्त मैं चिंत उदास अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार चाहे किस कर्म बाबा जी बख्शिश करते सन भाई ए तो दात है जिसनु मिल जाए तो समझिए अज रब तुठे रब तुठे दी ए निशानी संता संग विहारे। अच्छा मां साईं दे प्यारियां दे दर्शन होए लाभ की होया इस माई ने कहा तीन लाभ प्राप्त होंदे पहला ता बख्शियां रूहां दे दर्शन करके जीवन च ठंड पै जांदी उठ फरीदा गवन कर दुनिया वेखण जा मत कोई बख्शिया तुद मिले तू भी बख्शिया जा दर्शन करके साध के संग नहीं किच काल दर्शन पेटत होत नहीं किसे माया तारी दे दर्शन करो ना ओदी अमीरत दा असर पैंदा है मन चंगी कार है सूट चंगा पाया है हथ दे विच चंगी अंगूठी पाई है हीरे वारी ते ओदी अमीरत दा असर पैंदा है पर ए अमीरत ए झूठी अमीरत ए सदा रहन वाली नहीं दुनियावी तन ए असर रहन वाला नहीं हजूर कहना काचा तन संचे मूर गवार जिसने इस तन नु सब कुछ समझ इस तन दा खंडन नहीं है ए ना कोई समझे पर प्यारी साध संगत निर्वाह मात्र बाबा जी कहते सन इस दी भी लोड़ है पर असलियत भी तो सच्चे धन दी लोड़ है इस तन नु पानी डोब देंदा है अग साड़ देंदी है चोर चुक ले जांदा है पर जिन को सच्चा तन है इस तन को तस्कर जोए न साके ना उचक्का ले जाए इन को चुक नहीं सके अगन दहे पवन नहीं मगन है तस्कर नेड़ ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कतो न जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर कबीर जी कहंदे ने ए है सार धन कही है जिन्हों को धन है ना
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾਮੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ, ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿੱਠਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿੱਠਿਆ। ਫਰੀਦ ਪਹਿਲਾ ਲਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਰਣ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਰਣ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ, ਸੁਨਤ ਕੁਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਤਰੇ ਲੋਕੈ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਲਾਭ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਲਾਭ ਫਰੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੱਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਿੰਘ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋ ਭਲੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हो बुल बलहारी गुर आपने, जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मेरे।

0: सतगुरां दे धर्म परम गुरु साहिब है समूह हाजिर साथ संगत जी खेतल दिंदा हां उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। बेनती करदा हां हाथ जोड़ के सारे संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कार करिए ते रसना तो आके
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: एक बारी कृपा करो जी मुख मस्तक रसना पवित्र करदे हुए डूंगी डूंगी नमस्कार भी करो ते रसना तो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्हां महापुरुषां दी पवित्र याद मना रहे हां राजा साहब जी नाभ कमल साहब जी उन्होंने आज मैं पढ़ रहा सां जिंदगी नूं बिल्कुल छोटी जी और अस्थिर दस्या है ते उचेचे तौर ते एक वचन कीता उन्होंने राजा साहब जी ने कि जेड़े प्रभु सिमरन नहीं करदे परमात्मा नूं याद नहीं करदे उन्हां दी किते ढोई नहीं होनी चाहिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मनुखता हजे भी प्रभु नूं बहुत घट याद करदी महापुरशां दे ये केवल राजा साहब का ही वचन नहीं है किसी भी कौमीयत अंदर किन्ने वड्डे वड्डे औलिया अंबिया पैगंबर हादियाने दीन भक्त जन और गुरु साहबान हुए ने वो सारा ने इको गल आखी है कि भजन सिमरन तो बगैर ये देही जेड़ी ना ये उजाड़ दा ही घर है। सिमरन करांगे ता दर कबूल होवेगी। राजा साहब वचन करते ने कहते ने इंसान तू इन समझदा तेन ये मुफ्त मिल गई है मुफ्त मिल गई है पर यह ढेर ला दो दमा का काउंटलैस दी मनी दे दो ता भी यह प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए इसनू चंगा सुथरा सोहना बना ले सानू पुनः पुनः यह कहना चाहिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक शब्द का मैं मुकसद जी अर्थ करा धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान जी को साडे तुहाडे वड्डे वडेरा ने बिल्कुल अर्ज की होवेगी कि मालिक कृपा करके ये दसो कि भवजल तो पार किवें होईदा है भवजल तो पार किवें होईदा है। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहन लगे सतनाम का सिमरन करया करो। फिर इंसान कहन लगे साडे वड्डे वडेरे भाई जी किन्ना चिर करिए महापुरुष कहंदे ना भाई माला फेरिया करो वीर बुजुर्ग जेड़े इन्हां कोल जांदे ने माता मां भैणा वो चट दूजे नाल सवाल करदे महाराज जी किन्नियां माला फेरिया करिए। जिस विद्यार्थी नूं ये पता लग जाए कि एग्जाम बड़े डाढ़े ने इम्तिहान बड़े ग्रिम ने सख्त ने लेकिन कोई बहुत ही वधिया गैस लाने वाला मेरी बेनती ध्यान न सुनना मैं मशहूर हाँ आपकी किताब को बैठ के सरवण कर रहे हो विद्यार्थी ने एग्जाम विच बैठना है लेकिन डरता पिया है उसका टीचर उसनू गैस ला के दे दे गैस उसका 100% होवे ओ बच्चे नूं एक या दो दिन पहले दस दे पे बेटा होर कुछ ना करी किड्डी छोटी है उसने अपने गैस ते बेटा तू होर कुछ ना करी जो मैं तेनू अज गैस दस रहा ना 100% यही सवाल आने ते इन्हां दे आ जवाब लिखने ने ते तू फिर डिस्टिंक्शन पास हो जाए। तुसे सारे पढ़े हां गां पढ़ांदे भी हां बच्चों नूं ये ध्यान देना गैस ला दो जी ते फिर बच्चा बहुत वधिया 100% मार्क्स लैके पास हो जाता विद डिस्टिंक्शन पास हुंदा वजीफा भी लग जाता। असी तुसी सारिया ने सतसंग जी भवजल तरन दे एक इम्तिहान विच बहना है भवजल किवें तरना भवजल किवें तरना है ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੂਈ ਨੇ ਆਉਣੀ ਭਈ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸੇ ਤੁਕ ਨਾਲ ਆਖੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਕ ਹੈ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਪਾਪਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹੱਥ ਪਲਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਨੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈ ਚਲੋ 138 ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਫੇਰ ਲਈ ਇਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇਖ ਲਾ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਹੈ ਕਠਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹੋ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨੀ ਦੇਣਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ

0: दिनी जब हर पाव जल तरना।
1: कैसा 100% जैसे और फिर साडे सामने ही है। टीचर ने तो एक बार दस देता तो उनके बस में काम तेरा हो गया, तू पास हो गया बस, हूं अगले साल फिर गैस लावांगे। नहीं, गुरु साहबान ने ऐसी कृपा की इतने रख

नानक सिखे बोलिए तन मन विका हो सिखो विका सुखिए विका विकी सोए सिखा तो

दुर्योधन। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, मन बिरतियां नूं एकाग्र करे। भाई साहब लिखते हैं, फिक्का होके बोलिया दुर्योधन, की प्यासी नौकरां दे घर। भाई साहब लिखते हैं,

चलो ठीक है, मेरे नाल तां तुहाडी शुरू तो बनी ही ने, भगवान नूं उलांबे दे रहे, मैं ते तुहानूं माड़ा ही लगना, पर ए भीष्म पितामा ए करण वर्गे इतने योधे ते द्रोणाचार्य ए तां माड़े नहीं ना सन। असी रात तुहाडे लई इतना इंतजार किया, सारी सभा बैठी रही, तुहानूं इतना ना मन विच ख्याल आया भाई इतने वड्डे बंदे मेरे इंतजार च बैठे ने ते तुसी जाके नौकरां दे घर लै। सोचण वालियां गल्लां ने गुरु की साथ संगत। कई बार असी हंकार नाल बहुत कुछ सोच लैने, बहुत हंकार आ जांदा साडे वर्गा कोई नहीं, लेकिन भाई साहब उन्हां मनुखां दा हंकार तोड़ रहे हैं। ए वार सुना के

राजा बोली थे, बोली जा रही, ठीक है भाई। हुण मैं बोला, भगवान ने आख्या, हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या, हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन। तेरे घर विच सबो कुछ, सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे एक गल ना होवे मैं उथे भुल के भी नहीं जांदा। कि भाई साहब लिखते हैं,

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी दी अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असा निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखा दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यो लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वर्तीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है। इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है। हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तों अनादि काल तों सारे मंगदे आए ने ते ओ दे के जतलांदा भी ने। ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटाण वाला, इसम फाइल। ते सरार सिर वाहद, सरार जमा सिंगुलर प्लूरल, एक बचन बहु बचन। सरार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही भेदा नूं सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह, बाबा नंद लाल जी कहते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड़ियाई करते हुए, बेअंतता दसते हुए, वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने, तू इतना वड्डा है कि रोख रूहान की रोजी ना टारे। रोजी ही राज विलोक तराजक, रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेन मनते ने, तेरे प्रेमी ने, तेरी होंद दे धारनी ने, तस्लीम करने वाले ने, उना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने, उना दी ता गल की करनी। उना वल ता हे प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है, पर तू ते एडा बेअंत है, एडा बेनियाज है। रोजी हिराज विलोकत राज, रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखियां, रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है, रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है। जिन्हां विच लचक ना होवे, लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा है, जड़ा गजाज दे जांदियां ने, हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है। पर एक लकड़ी सुक जांदी है, उहदे विच जीवन नहीं हुंदा, समझो कि मर गई, अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखिए ते कमाल दी गल है, इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा, उहदे च लचक रहिंदी है। ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है, मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा। जो बंदा आकड़दा है, होमे विच आकड़िया होया, उहनूं मुर्दा समझो, क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं, मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहिंदे ने, सच्चे पातशाह तूं बड़ा बेअंत है, जो रुखे ने, सुके ने, जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने, ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने, उहनां नूं भी तूं अपने गैबी खजाने विचों वड मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए। धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेकां पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है, जो ते तो मुनकर ने, तेरियां दातां भी ले जांदे ने, तेरियां बख्शियां भी मान जांदे ने। हे मुने परमेश्वर, तेरियां नेमतां भी मान जांदे ने, ते तो मुनकर भी ने, पर फिर भी तो उन्हां दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, रोख रूहान की रोजी ना टार। तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने कि मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है, मैं हुण निश्चा कर लिया है कि दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी, ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा, ते उन ते मंगके ही देना है। मंगतिया कोलो मैं क्यों मंगा, मेरे गुरु ने मैनू सोझी पवा दिती है, गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है कि परमेश्वर ही वड्डा दाता है, ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुखदंत रसन कस जाए, इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी, हाजत नहीं रह जांदी। ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है। ते मैं हुण इस निश्चय ते पहुंचा हां, कित्थों मंगा हो, कौन है इस दे मुकाबले दा दाता? साचा साहिब है ते वड्डा दाता है, उस दे भंडारे अखुट ने। वाह वाह।
मुहे दूजी नाही थौर जिस पै हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे तुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इथे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उथे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया ता सा, फिर होया की है? जदो मैं दुआ कीती, जदो इल्तजा कीती, जदो खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे क्या माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गए, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उथे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों ने? ओ पक्का मंगता है, ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है, पे इथे अगे आ जा, तुसी ता कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता ढीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल ढीठ होके नहीं मंगदा, ढीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उथे ही रहना। जब तक कोई ढीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नू भी ऐसा ही एक जगह आख्या ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ए तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है ओ करन कारण समर्थ हो कर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोहतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदो तक कई बारी इनू शक्का शकूकां दा शुभात दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नू छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं जिसका तार लिया मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जा